0: लुकैया मारे वेडेनी ऊनी दुक्की की वाले मरे मेमोरी लॉस कीला
1: मेमोरी लॉस कौन द डॉक्टर याद सुनने दे
0: मम्मे किरी के बुन्ने है या सीनी वेडेने मुकुट आते पर वेड करने है या माता
2: माय गॉड
3: सुपर डॉक्टर ने डॉक्टर हरी तो मुखिया ने दिए नाले
4: हिना वेवी सिंधु हन्ने FM 93.5 FM 93.7 හැන්දෑවේ 4 වෙද්දී ටියුන් කරලා තියාගන්න.
5: Evening drive with Chamit and Charu.
4: Sama anugrahaya.
5: Rasayenut ihala. Gunayenut ihala. Vijaya tose mishranaya.
4: Vijaya products. Ape rasaya rate samata. Rida. Vibe, beat, it mix better.

0: दशमपहा अनुतुनाय दशमहाता लखांडे रेडियो आईटीएन सभे श्रीलंकिया हांडे
1: एकलाई विनाडी काए
2: विलाव ओपवेत किन आवे
3: दोतराये पेरली करने एनएलबी मेगा पावर तेवंत मेगा सुपरी टैग के अमतरव रुपियाल कोटिये का पावर सुपरी टैग सहा ग्रैंड सुपरी टैग के सुपरी रिमोट रत्या एनएलबी

0: दशमपहा अनुतुनाय दशमहाता लखांडा रेडियो आईटीएन सभे श्रीलंकिया हांडा
1: विला पसर दिखाए
2: विला अब ओपवेत किन आवे
3: दोतराई ये पेरली करने एनएलबी मेगा पावर तेवंत मेगा सुपरिटैग के अमतरव रुपियाल कोटिये का पावर सुपरिटैग सह ग्रैंड सुपरिटैग का सुपरी रिमोट रहते हैं एनएलबी मेगा पावर को बाद अदम मिल दी करने

भावे शोक रोग भय अनतुरु अमनुष्य उपद्रव राज भय सुर सतुरु करतर दिनेबिय तिरिसंगत सतुन्गेन सितुवन सियलु उपद्रव दुरिन तुरुवे।